0: ਕਰਨਾ ਸਟੋਰ ਨਿਜ ਵੇਗੋਨਾਡਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਬਤੀ ਦਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਅਬਦੁਲ ਵਕੀਲ ਐਂਡ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ੇਬ ਸਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਵੇਸ਼ੀ 0349 5289 022 ਔਰ ਬਿਲ ਨੰਬਰ ਦੇ 0311 5538 379 ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਬੇਕਰੀ ਦਖਵੰਦੂ ਨੂੰ
1: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़ेकार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम, यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनुमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
2: सारा दास दी माशुमान योखवा और तबलखवा कपड़ों शॉपिंग दपारबा तरसो मुंगा बाजारों की गर्जो।
3: ओ हो सरिया परेशान की गमा ददी मसले रासरा डेर खेस्ता कल दी।
2: हाँ सो
3: अलसाइड क्लास हाउस एंड गवर्नमेंट सेंटर द सड़ो तपारा हम मायारी अवर सुटी न मिलावेगी लक ग्रेस टाम टेक्स इडमानी पाशा अलकरम और नोर मल्टी नेशनल ब्रांड्स और जनानो दपारा मारियाबी मरीन सफायर निशा ऑपरेटेड लोन हम मिलावेगी और दाला सके दमाशुमान दपारा हम फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
2: मतलब योचत लांदी दा टोल सामान
3: आओ आओ तो योचत दलांदी दा हर से मिलावेगी
2: वाह वाह वाह वाह ब्याखो बेलू बेलू दुकानों ता दतलो जरूरत निश्ता
3: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अलसेद क्लाथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान लो पतायात साथे अलसेद क्लाथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस PSOPM अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम और पते दन गलतीगी नुसैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351 33 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सईद क्लाथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशाले में
4: अमन दा कलम पजोर बदलता रावलूंगा।
1: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए, अगर कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज, हालिया मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस व कंप्यूटर, लिट लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ, छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चों के लिए अलीहदा प्राइमरी सेक्शन के लिए तजरीबाकार फीमेल स्टाफ, VR Risers, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356 35 207।

0: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और
1: जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जिल्द को बनाए मुलायम और चमकदार।
2: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे, ये यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
1: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर,
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
5: रेडियो अमन नेटवर्क।
6: यौनिम सरोकबा आप
7: राशा लेका द्रेव सोकबा राशा लेका द्वित वाचा ने मोन वर्त मगे दो त्रिदा ने वाचा शाब
8: या लेका से गानी राजा दा कबाब पो मुंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
9: न गुल काका ता सुखरे अमीर आवले गलम मेहमानो ल कबाब पड़म
8: राजा यो कबाब मुंग सरो खरा छ दखले खवान दे वर सरा खशी
9: न गुल काका जमा पाल दे मैदे के में जख्म दे पूर पटी बलीगी अजमा में नाराजी
8: गोरा सेवनी तो परुनी बचे मैदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता।

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता एफ ए, एफ एस सी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 056535
1: ग्राम हलको दफारा दो खुशालई जीरे उस तासुला बलजाय तटलू जरूरत निश्ता स्तासु पर अखपल हार बटाग्राम के डेर मियारी और जरूरत टूल सीजन में लावे जलेशी लक दाल चावल हर किस्मा मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यो किलो मसाले सरा डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस वर्ष रहम मिलावेगी द माशुमान द पारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर नुबिया हम नन तशरीफ रोड़े रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर बटाग्राम था और तरला सकई द कोर टोल राशन हम पर होल सेल और हम पर परचून और पता याद साथे रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटाग्राम दनूर मालूमात द पारा पदे नंबर रब्ता होके असद हान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0300-56-32-017 और पीटीसेल नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी
0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क्यादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर

वेलकम बैक चुनाव कर वगैरह से इम्पोर्टेंट कॉल चिकम दिया हम राशि नगा पकी बिल्कुल डी जात जरूरी भी और नौ सौ दी देवा जिन आधा ब्रेक तरफ तक तेलु भाई दवा हम वापस रख लो चा चाचे उस मुंगा ज्वाइन करू आटो लो जरूरी आप प्रोग्राम के वेलकम खुश मदेद जी आई नो पखेर आले चिकम दिया वायु प्रोग्राम देश स्पोर्ट्स कॉर्नर माधव लिखी के सबसे मेजबान ताजुर रहमान अमन रेडियो एफ एम 88 एशिया दे चार द प्लेटफॉर्म ने दगा प्रोग्राम तासुता उड़ान दिखेगी आज दा प्रोग्राम सिर्फ तासु अवरे दिले नशी बल्कि दा पा फेसबुक बंदे तासुदा महल कतलेले छि दिया हम शे अमंग कचरे तासु कतलेले गोड़े तासु पा फेसबुक ओपन करवे सर्च बार तब जेल तब टाइप करवे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बड़े ग्राम जम जी के ऑफिशियली पेज दे आप बस असम खतर लाजिम तासु बे कमेंट्स वगैरह का कवल शे तासु चिकम कमेंट्स भी ग्रान और दिन को आगा बता प्रोग्राम इस लाज मन छि दिया का मुंगा जुड़ो सासु चिकम मीना भी जनाब नो जाहिर खबर दा लगे मुंगा मतलब अगे सासु का मैसेजेस भी कमेंट्स दा शामिल लगो नो अंदा से हैस कर नि शिके दे जनाब खबर दे पाकिस्तान हाई की टीम का बोला अच्छे वेल्स बंदे हुमा पाकिस्तान हाई की टीम चुकम दिया का मैच तासो दा हुए चे वे बेल अजक चे पाकिस्तान पोजीशन चे कम फर्दर खराब हो अगर फर्दर चे दिन नूर खराब शो और दे सर सर पाकिस्तान चे कम इब्तिदाई दो मैच हो नो अगर पाकिस्तान दिलासा लाडल ब्याज रातों के चिकम बल मैच हो इंडिया सरा कम चे रिवायती हरीफ थे अगे सर द पाकिस्तान हके के चिकम दिया का मैच रहा ग्रुप स्टेज बंदे और उदा का मैच पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू सरा डू एंड डाइव यानी मतलब पाकिस्तान दगा मैच अगर लूज की पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ने बाहर की दगा रंगी इंडिया चिकम दी जिना बगा दगा मैच लूज की इंडिया हम वर्ल्ड कप ने बाहर के दिलेशी ओ दगा मैच चिकम देगा जिना 19 अगस्त बंद शिवे आज पदगा के पाकिस्तान हा की टीम चिकम दे जिनाब अगेंस्ट रिवायती हरीफ भारत शिकस चिकम दे गए खोड़ ले दे याद देवी भारत लखवा इंडिया लखवा सलोर गोल्स चिकम दिया गए शिवी और पाकिस्तान लखवा दो गोल्स चिकम दी जिनाब आगा शिवी दी नो दी देवा जिना पाकिस्तान हा की टीम चिकम दे जिनाब आगा दगा दो गोल्स रहा दगा मैच चिकम दे अगेंस्ट इंडिया अगर लूज कर दे और न सिर्फ दगा मैच चिकम दे अगर लूज कर दे बल्कि पाकिस्तान द हॉकी वर्ल्ड कप ने चिकम दे अगर हुमा बाहर शिवे दे जिका पाकिस्तान चिदे हॉकी के रॉज कर दे सलूर जरा चिकम दे अगर वर्ल्ड कप चिदे अगर अखपल पन कर दे और दा यो द टीम द टोलो ना ज्यादा जरा वर्ल्ड कप गठल चिकम दी अगर द यो मुल्क दी पाकिस्तान सलूर जरा दगा वर्ल्ड कप चिकम दे जिना बगा गठल दे द देना खबर कम गो द बिल टीम नागे दा से वर्ल्ड कप चिकम दी तरोसा पूरे द सलूर जरा ना बल्कि द द्रेव जरा ना ज्यादा चुकम दिया गया नदी गटरी पाकिस्तान वाहिद मलक दे सीधे सरूर जला हा की वर्ल्ड कप चुकम दे जिना बगाई अखपल पर नुमकड़े दे दगे दगा सफर चुकम दे गया दगा से पूरे पाकिस्तान हा की जिसम्र प्लेयर्स दी दहा की टीम जिसम्र दी नो दगे सफर चुकम दे दगा 2026 चुकम हा की वर्ल्ड कप अगे सफर चुकम दे गया अखपल खतम तरफ तन रसे दे ले दे जका पाकिस्तान अडुंबी मैच के इंग्लैंड ने शिकस्त पड़ ले दे औ पदवी मनी मैच के द वेल्स खिलाफ मैच बराबर कर दे औ अखपल पर ग्रुप स्टेज मैच के आखिरनी मैच अगेंस्ट इंडिया अगे चदी लूज कर दिन सो दे वजना पाकिस्तान पोजीशन चुकम दे अगर डी ज्यादा नाकाम रहा दे यो पॉइंट चुकम दे पाकिस्तान यो पॉइंट तकरीबन हमने दे यो पॉइंट पाकिस्तान हर की दिन तक चुकम दे जिना बाका मिला शिवे

0: चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाया।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: हलका दिलबरा दावली दास गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओड़े दे।
3: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो औजिसम में दर्द निशी दापू पर सर चिलग नाश्ता हुकम नुस्तर की राम दे तोरी तूरी की गी।
2: दिलबरा नुतमात न वाय ददी मसाले को देर आसान हल दे।
3: अंकल जी हगस
2: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक खो ख्याल कवा सोख दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही।
4: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक, पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुजलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल करे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहाग माशुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोल ली भी नुम याद साथे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोड़ बटाग्राम दराबितेश मेरदा 0311-158-7745 बिल नंबर दे 0311-84-33-878।
5: तासु औरे रेडियो अमन, रेडियो अमन द अमन आवाज स्तासु आवाज।
6: अमन दा कलम पजोर बदलता रावलूंगा।
7: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए।
8: कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज, हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता एफए एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब जदीद लाइब्रेरी कोर्ट इत्मीनान और जिम्मेदारी के अलहदा सेक्रेटरी सेक्शन के लिए तजुर्बाकार फीमेल स्टाफ वी आर राइजर्स महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम फोन नंबर 0356-35-207।
9: बटाग्राम हलको दफारा दो खुशालई जीरे उस तासुला बल जाए जरूरत निश्ता तासु पर अखपल हार बटाग्राम के डेर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे दलेशी लक दाल चावल हर कस्मा मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यो किलो मसाले सरा डोड़े भी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस और सरहम मिलावेगी द माशुमानु द पारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर्स नुबिया हम नन तशरीफ रोड़े रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर बटाग्राम था और तरला सकई द कोर्टोल राशन हम पर होलसेल और हम पर परचून और पता याद साथे रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटाग्राम दनूर मालूमात दपारा पदे नंबर राब्ता होके असद हान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0356-32-017 और पीटीसेल नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक आज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं साथ
1: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM अतात्या इशारिया सलोर बटाग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आवरई।

0: बना बाजार की डेर आसानी सरा मिलावेगी। ददी ने अलावा पचहत्तर प्लेन बाजार और जिला तोरगर पहर तहसील की हम मिलावेगी। कुम खलक चिद बटाग्राम बाजार तराजी नुहावी ददी दो जयून हम अखिस्तलेशी यौद अल फखर होटल लांदी और बल यूनाइटेड मार्केट तमखामख फैसल मार्केट की और कपते दर न गलतीगी न पायल खान सरा पदी नंबर राबिता कवा 0344-950-32-73 बल नंबर दे 0305-534-84-41।
1: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से। मंशियात स्मगलिंग का अंजाम सिर्फ हथकड़ी, जेल और बदनामी है।
2: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
3: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
4: हलका दिलबरा दावली दासे गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओढ़े दे।
5: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो आओ जिसम में दर्द दुनिशी दापो पर सर चिल नाश्ता हुकम नस्तर के राबंदे तोरी तूरी कीगी।
4: दिलबरा न तमाता न आए ददे मसाले को डेर आसान हल दे।
5: अंकल जी हगस
4: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक हो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तियार दहागे पहचान और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही।
6: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक, पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल द हगमा शुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल कीगी गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोलली भी निनुम याद साथे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरा दा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878।
7: ओह खुदाया वादरा निजदेशो और जामो ही तो पता होने लगेगा टोल बाजार में चाण करो और दस रखो की सुटुन में उन मुंतल और चर्त चु डिजाइन लिखे भी अल तब बीही आसमान सर खबर कई उधड़े में वही चिचरत लाहौर या पे खबर तलाड़म
5: खुश खबरी बटग्राम दुकानदारानुला और उदा करेंगे आमो खलकुला ओस पे खबर और लाहौर तदतलो जरूरत निश्त दे दिल तासुर टोलो ता बेहतरीन क्वालिटी अगा मिला भी दिलेशी अवाल तली औजान वाली तंग कलच राम क्लाउड हाउस बटग्राम किश्ता नो दबल से गुख्ता न सदा
7: राम क्लाउड हाउस बटग्राम खहा अल तसस्ता
5: दहर जा दवस मुताबिक दव दुनो औखादियो द जामो गोरे पी के जुनिश्ता मसलन दहगुई द पिंजो सुटुनो पैकेज चिपुखा पिंज दिश जर रुपए वो उस ये वाजी पर्स पार्लर निम जर रुपए की दी चिपके द खादे बकायदा कालीन मरीना खास सूट टिश्यू और प्रिंट शामिल दी
7: वावा द हुडी रहा मामला दा बल से पैकेज उमश्ता
5: आओ वाली ना द हुई बल द तो सुटनो वाला पैकेज दे चिपुखा पिंज पंजोस जर रुपए वो होस ये वाजी पर पिंज देश जर रुपए की मिलावेगी परे की शादी फ्राक निकाह सूट अड्डाना टिश्यू डिजाइनर काटन सूट लॉन प्रिंट स्विस मेहंदी सूट वन पीस लॉन औदा सिनोर शहाना काली शामिल दी
7: रिख्तिया दासी आला क्वालिटी प्रीमियम स्टाइल और दुमना मुनासिब कीमतुना या इंतजार से लपारा राधा ची हम उस लाड़ू
5: जी नो पता याद साथ ही राम क्लाथ हाउस नसीम मार्केट बटाग्राम और द्वीम ब्रांच दे لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او در رنگونو زامن

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

यानी दमला दर्द, फोटू दर्द, जुड़ू दर्द, जोजो ले जरूर इस्तेमाल के। पालिज मरीजानो द पार डेर जबरदस्त कार कवि, पालिज मरीज पे मालिश के दवागाने वकीता सुता और हर किस्म जहम दे पारे उसके लेशे दवेख्तू मालिश पे कवेशे बना द कोपड़े पे मालिश कवेशे वजूद तक वाले रसे भी पस्तासु मिचाजो की जलन भी लिकोरिया मसले भी याद रसोले मसले भी यो जल जरूर इस्तेमाल के पदे की जीतून और कलवंजीदा मिलावट पकी निश्ता शफाद पकी खा ठोले पेदी पेदी दी बिल्कुल जनाब दादे पे मटस्सी शार या चार रेडियो मन बटग्राम मातवेले शी निजाम सईद और तासु तसे वेले शी दा बतासु मंग तो पखपल वाए मैसेज बकवाए खाल बकवाए मंग तो बठेमरा कवाए मीनवालो।

अस्सलाम वालेकुम मामू, आप कैसे हो? प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, सब बहनों को सलाम। हाँ सलाम, मायरा शिराजी, सिदरान सफाई जहानिया, हलीमा अक्सर जानी नाजेश नूर से प्रोग्राम से बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। सलाम वालेकुम भाई जाना, संगे तासु खे जी, प्रोग्राम सब मस्ते मस्ते, तासु शुक्रिया जी। जब बिलाल जान था बटा ग्राम ना, बिलाल जाना ओ जरा तो खे मजा की पता नहीं चंदन मंग सरा कनेट गुलाला लोगों ने जाते की। सलाम वालेकुम मामू, बखैर रागले प्रोग्राम जबरदस्त है मामू, टू लीजना को सलाम। हाँ सलाम नादिया मानो अनसाता ज सोनिया, सोनिया मोबाइल नूर प्रोग्राम खामोशी सरा औरम मामू चाचे माता सलाम का वो तो वालेकुम सलाम, अल्लाह पामान सोनिया एम मामू। मामू था सुवाद उनके मेरा मन ना सड़वर से ग्रानी दा सुखो

0: वो दृष्टे पके कमुंगा गुरु नो पपुरा लाका के अजमेरा के देशानो के किली दी पागे के हुजरेस्ते नूर दास किली दी चमुंगर तलाशु नो अक्सर आलती के बेटे की नो पकार ला नो चुजरे या उटांग टाकुर पकीनी नो ब्याह बलका मीनावाल खपशी का ना
1: मंगुल
0: आउ चे ब्याह शाह सवार पकीनी नो ब्याह हो बनूर कमी